सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा।

चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ है मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जुजू करिए हो रच्छा।

नमस्कार तेसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतन को पलमो बल कियो कट कट के

जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निरपकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका

Sigrishtrishtha dakhai achampava adajagada srupa syampava abracha miri tum karo sikh ubara a sikh sangaro dos jite uthavat utapata sakala malecha karo rankata je astoritav sarni pare tinke dost dukh to hai mare परख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार ते अह ताके काल निकट नह अह रक्षा होए ताहे सब करला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रेद से

संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस वंतीन कहिजय। पादर सुधी अष्टमी रविवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। हित श्री चतुरोपख्याने त्रेया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405।

पृथम तरो भगवत कोत्याना बहुर्गरो कपिता बदनाना कृष्ण जथा मच्छ्रितुर उचारो चूक होय कबले हो सुदारो कब्यो बाच दोहरा जो

कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरव सस क्रूर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत। सुरग बास रग पर करा सगरी पुरी समेत चौपाई।

गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे पिरथा कोई ना जाए जे आवे तुद आहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहा जप गुरना नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरना सतगुर।

सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जन कमन विश्राम रहाउ। प्रभु का सिमरन करब नाम बसाय। प्रभु का समन दुख जम नासाय। प्रभु का समन काल पर हरय। प्रभु का समन दुख समन टर। प्रभु सिमरत काश विघ्न लागय। प्रभु का सिमरन आनंदन जागय। प्रभु का समन पावना व्यापय। प्रभु का समन दुख ना संतापय। प्रभु का समन साधु का संग सर्वन धन नानक हरंग। प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नाम निध। प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बोध। प्रभु का सिमरन जापता पूजा। प्रभु का सिमरन विंसा दूजा। प्रभु का सिमरन तीर्थ सनानी। प्रभु का सिमरन दरगाह मानी। प्रभु का सिमरन हुए सो पराय। प्रभु का सिमरन सोकर फरा। श्री सिमरह जनाब सिमराय। नानक ताका राखो पाय। प्रभु का सिमरन सबति ऊंचा। प्रभु का सिमरन उदरम ऊंचा। प्रभु का सिमरन त्रिसना भोजाय। प्रभु का सिमरन सब कह सो जाय। प्रभु का सिमरन नाह जम त्रासा। प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु का सिमरन मन की मर जाय। अमृत नाम अमृत माह समाय। प्रभु जी बस साध गिर सना। नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरह सी धनवंती। प्रभु को सिमरह सी पातवंती। प्रभु को सिमरह सी जन प्रवान। प्रभु को सिमरह सी पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरह सी बीमाता जी। प्रभु को सिमरह सी सर्व के राजी। प्रभु को सिमरह सी सुखवासी। प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ती राग जनाव दयाला। नानक जन को मंगल वाला। प्रभु को सिमरह सी परोपकारी। प्रभु को सिमरह तुम सदबलहारी। प्रभु को सिमरह सि मुख सुहावी। प्रभु को सिमरतन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरतन आत्म जीता। प्रभु को सिमरतन निर्मल जीता। प्रभु को सिमरतन आनंद कनीर। प्रभु को सिमरह बस हर निर। संत कृपा ति आनंद जाग। नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभु का सिमरन कार्य पूरे। प्रभु का सिमरन कब होना चूरे। प्रभु का सिमरन हर गुण बानी। प्रभु का संसार समानी। प्रभु का सिमरन निह चरासन। प्रभु का सिमरन कमर विगासन। प्रभु का सिमरन अनहद चिनकार। सुप्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरह सी जन जन को प्रमाया। नानक तिन जन सरणी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाय। हर सिमरन बीर उपाय। हर सिमरन पै सिद जति दाते। हर सिमरन नीच चह कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना। सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सकल आकार। हर सिमरन वह निरंकार। कर कृपा जसा बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन धन पाया। सर्वोक दीन दर्द दुख भंजना। कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयु। नानक प्रभु साथ अष्टपदी जहमात। पिता सुतम इतना पाई। मन ऊह नाम तेरा संग सहाय। जह वह पाया अंदू जम दर। तह केव नाम संग तेरा चल। जह मुस्कर हुआ दुपारी। हर कुना खन माह उदारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तर। हर कुना कूट पाप पर हर। गुरु नाम जप मन मेरे। नानक पाव सुख निर। सब श्रेष्ठ पर राजा दुखिया। हर कुना जप तो सुखिया।

జీవితరాక్షణానుక నిర్వహిష్ట ప్రాణికోను బుద్ధికం దృష్టాని జైన తుం సహజ స్వారుసి గార్య గర్భగన మహజన ఉభార్య బర్భవసూద పరజోమన పూజన సుఖసూద బిరద పయాగు ప్రసాగ సయన ముఖా పయాగు వేష కవతయన నిర్గుణ గుణ కృష్ణ ఉగ జయ బక్షి హోత నానుక శ్రీ జయ జయ ప్రసాద తరుపుర సుఖ వస సత్ప్రాద్మీత వనత సంహస నిహ ప్రసా పీవహ శీతర జల సుఖద పవన పావకమరాజ ప్రసా పూగ సవరస సగ సమగ్ర సంసాత్ వసాదీనిహ పావకరణ నీతర రసనాతి సిహిత్యాగౌర సంరచన ऐसे दुख मूढ़ व्यापे नन काढ़ प्रव्यापे आदि अंत जो रखन हार ते सस्यो प्रीतन कर गुवैर जग शिव नवन दुपावता से मूढ़ मन हिलावे जो ठाकुर साध सदा हजुरता को अंधा जांत दूरे जा की टहल पावे दरगह मैन ते सहब सारे मुगदे जां सदा सदा हुकुलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौड़ी संग्रह चाय साच छोड़ झूठ संग मचा जो छड़न सो अस्थिर कर मन जो हवन सो दूर पराने छोड़ जाय श्राम कर संग सहाय तह पर हर चंदन प्यो तार तुय कर तव प्रीत पसम संग हुए अंत गु मह पत तिक्रा नान काली प्रभ दयाल कर दूत पशु की मान सजात लोक पुचारा कर दिन रात बाहर पीख अंतर मर माया शब सना कह कराय छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर ब्याह पलो बसवान अंतर यगन बहर तम स्व गर पाथर कैसे तरया था जा के अंतर बस प्रभाव नान तेज सहज सुमायत सोनंद कैसे मर पाव कर गहली हूड़ निभावे कह बुजारत बुजा डोरन कही गया ताओ समझा पूरा कह विष्णु पाद गावे गुम जतन करा ताओ पी सुर पंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो वह उस गावन करतार करुणावै दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तर संग सहाय सुवावे न चीर जो वै राई तास प्रीत बलुवै के गृह पीतर बस आनंद किरमा रंग रस दृढ़ कर्मान मन प्रतीत कारण अवै मुड़ी चीत वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह ए आहु जुगत बिहानी के जन्म नानक राख लिहुआपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहरदा जियो पिंड सब तेरी रास तुम वैत पिता हम वैर कतीरे तुमरी कृपा में सुख निरे कोई न जाना तुमरा अंतुचे ऊंचा भगवंत सगर समागरी तुमरा सुतर तारी तुम दे स्वागकारी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बान श्लोक दीन हर प्रभ छोट कर ज्ञान सुवाय नानक कहू न सी जय बिन नावे पत जय अष्टपति दस वस्तु ले पाछा पावे एक बस कारण में खोड़ गवावे एक बिना दी दस पी हिर ले ताओ मुड़ा कहो कहा क्रिय जय ठाकुर से नाही चार ताको की जय सद नमस्कार जय कमल लग ब्रह्म मीठा सर्व सुख ताक मन उठा जय जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक दिन पाया गन तो साहू अपनी दिरास खाद पीत भरत आनंद विलास अपनी अमान कश बहुर साहू ली अज्ञानी मन रूस क्रिय अपनी प्रतीता भी हो बहर उसका विश्वास न हो जिसकी वस्त हा रख प्रभु की आज्ञा माना बात है उसके चौकन कर नानक साहिब सदा दयाल अनक पाय तू माय कित सर पर्वत जान नीत वृक्ष सिंह रंग लावे ऊह बिन सह मन पुछतावे जो दिस सुचाल नार लपट रही हो तहदा अंधार बटाऊ सिंह जो लावे नीह ता को हाथ नावे की मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानका पुलय लाय मिथ्या तन तन कुटंब सुबाय मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या रा जोवन तर मार मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रात हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्त मिथ्या द्रोह मुह अब मैन मिथ्या अब सुपुर करत कुमार स्थिर भगत साधु शरण नानक जाप जब जीव हर के चरण मिथ्या श्रावण पनंद सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ कव हिर है मिथ्या नेत्र पीख पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसन पूजन अनुस्वैद मिथ्या चरण पर विकार कुता मिथ्या मान पर लोभ लुभाव मिथ्या तान नह पर उपकार मिथ्या बासरेत विकार बिन पूज मिथ्या सब पय सफल दिह नानक हर नाम लय व्यर्थि सागत की अर्ज सज बिना कह उद सूचा व्यर्थ ना बिना तनंद मुखावत ताक दुर्गंध बिन सिमरन दिन रह नुव्रथ बिहाय मेघ बिन जो खेत जाय गोविंद भजन बिन वृथ सब काम जो कृपन कि नरार्थ दाम तान तांति जान जिह काट बस हर नाम नानक तक बल बल जाओ रह त्यवर कश्यवर कुमावत मन प्रीत मुखम कंडलावत
ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਹਿਰ ਪੀਖ ਨ ਕਹੁ ਪੀਨ ਅਵਰਪ ਦਿਵਸ ਆਪ ਨ ਕਰਿਆ ਆਵਤ ਜਬ ਜਨਮ ਅਮਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖੀ ਸਿਖ ਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੁੰਜਨ ਚਨੁ ਪ੍ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੀਨ ਦੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਹੈ ਮਨ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨੂੰ ਬੀਰਾ ਕਿਸਾ ਦੁਰਜ ਨਾਵਤ ਕਿਸਾ ਬੁਝਾਵਤ ਨੀਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣ ਸਕਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਾਸ਼ ਜਾਣੇ ਆਦਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹ ਭਾਵੈ ਤਿਹ ਲਈ ਲੜਲਾਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਮ ਨਾਨ ਕਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿੰਸ ਜੈ ਹੁਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਤੀ ਹਮਰਤ ਖਾਹੀ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਰਖ ਮਨ ਵਾਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਸੁਖ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਜਿਸੇ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਘ ਸੁਖ ਵਸਨਾਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਤ ਸਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਹਿ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ ਧਿਆਵਨ ਯੁਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਹ ਧਿਆ ਕਤਵਲ ਭਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨਾਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਜਹ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹੁ ਮਾਨ ਮੁਖਤਾ ਕੁ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰੁ ਰਹਿਤਾ ਤਨਮਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਕਿਉਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ

कहत जो प्रसाद तिर सगर शिदर ठाक मन सरण पर ठाकुर प्रवताक जिह प्रसाद तुझ को ना पाहु तै मन सा सा समर प्रभु चय जय प्रसाद पाय दुर्लभ देह नान ताग भगत करी जय प्रसाद आ भूखन पहरी जमा दे सिमरत कुमार सुखी जय जिह प्रसाद सब हस्ता सवार मान दे प्रभु काउ कबू न बसार जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरु प्रभु अपने मना जन तेरी मन बन तो बनाई उठ बैठ तो साध तिसह त्याई तिसह त्याई जो कालक है ईहा उहा नानक तेरी रखा जो प्रसाद करे पुन बहदान मन आठ पर कर दुखा ध्यान जो प्रसाद तुआ चार ब्याह हर दस प्रभु सास सास तर जो प्रसाद तेरा सुंदर रूप सब प्रभु समरह सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निक जात सुप्रभ समर सदा तन राज प्रसाद तेरी पात रह गुरु प्रसाद नानक जास कहे जय प्रसाद सुन करण नाद जय प्रसाद पीख विसंवाद जय प्रसाद बोले हमर तरसना जय प्रसाद सुख सहज वसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण भरा जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज संवाव है सप्रभ त्याग बरकत लाग गुरु प्रसाद नानक जाग जय प्रसाद प्रगट संसार प्रकुर नमन बसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रि मन मूढ़ तू ताक जाव जय प्रसाद तिर कार्य पूरे तुसा जान मन सदा हजुर जय प्रसाद तू पावे सा चूरी मन मेरे तू ता सुरा जय प्रसाद सबका तुझे नानु

से। कई कोट जन्म जीव मर है, कई कोट वह जोनि फिर है, कई कोट बैठते ही खाए ही, कई कोट काले अंधा को पाए ही, कई कोट गियत नवंत, कई कोट माया में चिंत।

से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डुलाने सुबर परिप्रिय संग उपजा चाय साध का संग परिशरण सब त्याग अंतर प्रकाशला गुड़ पागी जप्या प्राप्त सूर्य नानक नाम रति सुख हुए शिव के मन सा पूरी पई साधु गुरु तीन निर्मल बादल जन को प्रम हुए दयाल शिव के सदन हर बंधन काट मुक्त जन पया जन बन दूह प्रम गया ये छपनी शारदा सा पूरी राव रहया साध संग हजूरी जिसका साथ लिया मिला नान भक्ति नाम समाय सुखम बिस्तरा जी का न पाना सुखम बिस्तरा जी किया जाना सुखम बिस्तरा जन सब किस दिया सुख बिस्तरा जी जीवन जिया सुख बिस्तरा जी अगन महाराखा गुरु प्रसाद को बेला राखा सुख बिस्तरा जी विखति काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरु पूरा ताते है बुझाया प्रभु अपना नानक जानते आया साजन संत करो एहो का मान त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जप अवर नाम जपाव भगत पाए तर संसार बिन भगति तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख नित नाम गुरु जत पाए विश्राम सकल दुख कावत नास नानक नाम जप गुंता सुभ जी प्रीत प्रेम रह चाव मन तनंतरी स्वाय नेत्र पीख तरस सुख मानव साधु चरण तुहे भगत जन का मान तन रंग बिरला को उपाव संगिक वह दीजा करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कह न जाय नानक रह सर्व समाय प्रभक संदीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा

पाई, गुनिम हर के गुन गाय, अनकराज भोग बड़े आई, हर के नाम कथा मन पाई। वह भोजन का प्रसंगीत रसना जापती, हर हर नीत परि सो करणी, सो वतनवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत, सत्संग प्रादि हुन वह सर्वसुहना प्रकाश, श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपने किया नानका, आप ही फिर जाप अष्टपद जब अकार्य काशन दृष्टि तब आपन तब कहती होता, जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकुमात, जब इसका वरुण चिहन न जाप तो तब हर सोग कहु किस व्यापत, जब आपन आप अपार ब्रह्मता मोह कह कहुत परमापन हीरा वरती, जा नान करने आना दूजा जा होत प्राप्त केवल तनिता बंध मुक्त कहु किसको गानी, जा भी कह हर गुमा पार तब नर स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रसाद सुभाई तब सब सकत कहो कि दठाई, जब आप अपनी जो तर तब कौन ने डर कौन का डर अपन चलता आप करने हार, नानक ठाकुर गुमा पार बनासी सुखा बनासन तह जन वर्ण कहो कह बनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सूर्य तब जम कि त्रास कहो कि सोए,

तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश स तह शाल शतर लगत कहु कीस। जह जोत स्वरूप जो संग समायव तह कह पू कम द्रवतावे कर्म क्रमण कर्ण हाय नान करते का नाह समाय रुज व्यवन सुवन संग बनाई तब कवन वाय वा मित्र सुत पाय जह सर्व कलया वह प्रवीण। तह वेद कतिब कह कुचीन जब अपना पुआपुर तार तब सगन अब सगन कह विचार जह अपनू चा अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा। विस्मर विस्मर ही विस्मर नानक अपनिका जान हो आप जहाँ शाले शेद अपेद समाया। ऊ है कैसा व्यावत माया उसको आप हाथ।

पंचाकार देह गुण वह किन विस्तार पाप पुनतः पई कहावत को नरको सुरु वंशावत आल जाल माया जंजाल हाँ मैं मूह परम पै पार दुख सुहमान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान अपन खेलाओ कर दीख है खेल संकोचाता नानके कह जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पास हर संत प्रताप दोहु पह कया पह तन उनकी सुबह बरिया बहकावत करे आनंद चो जा पहरा पुग निर्जोग जह पवद सा पनाय लाव जह पवद खील खिलाव भी समार था अगनत अतुल ज्यों बलाव त्यों नानक दाह बोले श्लोक जी अजंत की ठाकुर आप वरदनार ननके को पसरिया दूजा कहन दृष्टा राष्ट्रपति आप कथा सुनने हारा पहि का विस्तार जात पवत सृष्टि उपाय अपना पाने लय समय तुम दिपिन किशो अपन सूत सब जगत पुरोय जाको प्रभु जी आप सच नाम सूजन पाय सो समदर्शी तत्कवीत नानक सर्व सृष्टि का जीता जी अजंतर सवता कह दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राख दे कोई न मारे सो मुआ जह मन हो सर तिहताज अवर कहाँ को जाय सब सिर एक निरंजन राय जी की युग जाक समहाथ अंतर बहर जान साथ गुण दान व्यंत उपा नानंद सदबल हर पूर्ण पूरे दयाल सब

आखह पड़ करहे वखियाणम। आखह ब्रह्म आखह इंदु आखह गोपिता गोविंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह किते किते बुद्ध आखह दानु आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेवम।

जंत्र जंत्रंग नम इष्ट इष्टे नम तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा शिवदा बुद्धदा बृदकर्ता अद उर्दार्धंग अघंग ऊघर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं शेदियनाम अकामंग समस्त प्राजी समस्त स्तुतामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं आदेश हैं अपीस हैं पूजांग प्रयाद छंद अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नम सर्वान्य समस्त निदान नमस्तु नरनाथे नमस्तु ब्रह्माथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नम सर्वदेशे नम सर्वपेशे नमुरा राजे नमो साजे नमो साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञान नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृषंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृद्ध सिद्धं निवासी चर्पण शांदो त्वय प्रसादम अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलह कर्म सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भाने सर्व माने सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व भुगता सर्व जुगता सर्वं देवं सर्वं पीवं सर्वं काले सर्वं पाले रू आल छंद त्वय प्रसाद आद रूपानाद मूर्ता जौन पुरुष अपार सर्वमान त्रमान देव पे वादार सर्व

पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष अपारो सर्व सुरचियो स्वयं भव गण भंजन हार काल हिंकला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपीश अंग राग नरंग जा कह जात पादन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप मिघ अन उस्तद एक पुरुष अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगना तुम एक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तयन पीख सर्व शास्त्र न जानहि।

स दिश अदृश अकृश भगवती शांत उत्व प्रसाद कथते के अछज दिश के अभिज भिष के अगंज करम के अभंज भरम के अभिज लोक के अदित शोक के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभ के धर्म तुजा है के अशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति हैं के क्षत्र क्षत्रि हैं के भ्रमंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव हैं के आप अपिव हैं के चित्रंग विहीन है के अधीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हाक है के पाक बेअब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के शाहन साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राज करे ही मैं के कर्मंग करीम है के सर्वंग करी हैं के सर्वंग दरी हैं के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है केशवतर देश है केशवतर भेष है केशवतर राज्य है केशवतर सज है केशवतर दीन है केशवतर लीन है केशवतर जा हो केशवतर पा हो केशवतर देश है केशवतर भेष है केशवतर काल है केशवतर पाल है केशवतर हंता केशवतर गंता केशवतर भेखी केशवतर भेखी केशवतर काज है केशवतर राज्य है केशवतर सुख है केशवतर भूख है केशवतर त्राण है केशवतर प्राण है केशवतर देश है केशवतर भेष है केशवतर मान्य सदैव प्रधान्य है केशवतर जाप्या केशवतर थाप्या केशवतर भान है केशवतर मान है केशवतर इंद्र है के सर्वंग केशवतर चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन लवजू है तमाम रजू है बेसुल सलाम है श्रेख तुम दाम है गरीब शिकस्त है गरीब परस्त है बिलंदन मकान है जमीन जमान है तमीजुल तमाम है रुजो निदान है रिफुल अजीम है रजाय के यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गरीबुल खराज है निरुक्त स्वरूप है धर्मगुद विभूत है प्रभुगत प्रभा है सोजुग सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद रूप अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाम त्रिभर्गम त्रिबाध्य गंजे अगाध्य शुभंग सर्वभाग्य सुसर्वा अनुराग त्रिभुत स्वरूप है छिज है अशूत है के निर्गुण प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है।

सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनुल चिराग है, के कामुल करीम है, के राज ग्रहीम है, के रोजी देहंद है, के राज ग्रहिंद है, गरीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गरीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकान है, रास्तुल विकान है, कलंकंग प्रणास है, समस्तुल निवास है, गंजुल गनीम है, रजाय ग्रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब करा है, के नरकंग प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के शर्बुल गवान है, बेसुलवान है, दमामुल तमीज है, समस्तुलया जीज है, परम परम ईस है, समस्तुलया दीस है, देसुल अलेख है, बेसुल अपेख है, जिमनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कुमार है, के जुरत जमाल है, के अतरंग प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मदपार शांत त्व प्रसाद है, मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर गंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल मंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास अजान बाहु एका सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खण खयाल गुरुवर अकार घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात या जिजन वादन झंझ गात अन रंज बाद अन टुट भंडार अन ठर पारा डीठ धर्म अत ढीठ करम।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताप चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सुबह तुमका हुआ, भात दय मोहि बचाव हो। सुखी बसाय मोरो परवारा, सेवक सिख सुबह करता राम। मोर अच्छा ने कर दय करिय, सब बैरन कौ आर संघरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवरना, त्याऊ जो बर चाह सो तुम दे पाऊ। सेव सिख हमारे तारिय है, झुंझुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दय मुझ वरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पछा, श्रिया स्तुर जो करी हो रक्षा। राख लो मोहे राखन हारे, साहिब संग सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो प्रिय चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जुग अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जवन काल योगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूत ही यो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत का अवतारा, सोई गुरु समझिहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सबकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पर मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले भरे की पी पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछाने, घट घट के पर पट की जाने। जावुद करखरा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जावा करख कर तो कब हूँ, तुम मैं मृत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा।

कहूँ सुबिट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाया चंपव आज आसरो स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिद उठवत उत्पाता सगर मलेश करो रणकाता जे अस्तुता सरणीम परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटा।

सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छाह शुआ सकै न कोई। एक बार जिन तुम संभारा काल फास्ते ताहिं बारा जिन नर नाम ते हरु कहा दर्द दुष्ट दुख ते रहम। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आब हाथ दलिहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्व सुबराता कृपिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता। श्री हस्तु जय पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख ना दिसै ब्यापत कोई अड़ेलम सुनै गुंग।